0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

तेरा अक्सम अदाए ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फुल है। लकी मेरा आसम अदाए ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फुल है। अरे शादी।

अरे ताजमहल बनवाना शाहजहां की भूल है, उसके पास पैसा अपने हाथ में तो फूल है। तूने गुस्से में खून मेरा काटा, तो आशिक सरेंडर हुआ।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ.
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.
3: तपाईँ रेडियो मर्सेङ्गी एफएम